सिम्कोने शुरुए यांदा रिरि चीजी सेंशिं बदीनी कावे जोंकी लुजु चेमो रिजे ग्याजु छुदी यी